0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की पुनः शुरुआत की। उन्होंने वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare sulla liturgia sacrosanctum concilium.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। इस धर्म शिक्षा माला में हम साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर अपना चिंतन जारी रखेंगे। आज हम धर्म विधि दैनिक प्रार्थना के कलिसियाई आयाम पर विचार करेंगे। संत पापा लियो ने कहा, जैसे कि प्रेरित संत पौलुस हमें सलाह देते हैं, यह पवित्र आत्मा है जो हमें प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं। पेंतेकोस्त के दिन से पवित्र आत्मा कलिसिया में निवास करते हैं, हर किसी को उसके कार्य के लिए प्रेरित करते हैं और विशेषकर प्रार्थना करने के लिए। यीशु के पुनरुत्थान उपरांत यरूशलेम में जन्मे प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय में हम पवित्र आत्मा में जीवन को पाते हैं जो पुनर्जीवित यीशु द्वारा प्राप्त होता है। तब से लेकर कलिसिया पास्का रहस्य की यादगारी मनाने हेतु एक साथ आने में कभी नहीं चूकी है, जहां हम उन बातों को पढ़ते हैं जो पूरे धर्म ग्रंथ में उनके संबंध में लिखे गए थे। हम यूखरिस्त की धर्म विधि में उनके पुनरुत्थान और मृत्यु के उपरांत विजय की यादगारी मनाते हैं और इसके साथ ही हम ईश्वर को उनके अकथनीय उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु ख्रिस्त में उनकी महिमा के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम। संत पापा ने कहा, हमारे समय में जहां हम कुशलता के प्रभाव और भौतिकता की मानसिकता को पाते हैं, प्रार्थना हमारे लिए निरर्थक और तुच्छ जान पड़ती है। एक दुनिया में जहां विज्ञान और तकनीकी सारी चीजों का उत्तर देती है, प्रार्थना हमारे लिए एक तरह से पलायनवाद का स्वरूप लगता है। उससे भी बढ़कर बहुत से ख्रिस्तीय परिवारों में परंपरा से चली आ रही प्रार्थना को हम अब नहीं पाते हैं, जबकि बहुत से लोग इसे एक तकनीकी के रूप में देखने के भ्रम में पड़ जाते हैं, जो अपने में एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति जान पड़ती है और जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत रूप में कुशल मंगल रहने तक सीमित हो। प्रार्थना यद्यपि मानवता के एक मूलभूत आयाम स्वरूप हमसे इस बात की मांग करती है कि हम इसकी सच्ची प्रभावकारिता की पुनः खोज करें। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम ने इसकी आवश्यकता को गंभीरता से लिया है। यह संत पापा पॉल छठवें के लिए एक बृहद खुशी का कारण था, जो इस प्रथम दस्तावेज जिसे वैटिकन द्वितीय महासभा ने स्वीकृति दी घोषणा करते हुए कहते हैं,
2: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione.
1: ईश्वर सर्वप्रथम आते हैं, प्रार्थना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। धर्म विधि हमारे लिए दिव्य जीवन का मुख्य स्रोत है जो हमें दिया गया है। वह हमारी आध्यात्मिकता की प्रथम पाठशाला है। वास्तव में धर्म सिद्धांत में शब्दावली प्रार्थना, हमारे लिए एक पूरी धर्म विधि की ओर इंगित कराती है। यह दृष्टिकोण हमारे लिए निर्णायक है, क्योंकि यह धर्म विधि में परिवर्तन को दिशा निर्देशित करती है, जिसके फलस्वरूप विश्वासियों की सक्रिय सहभागिता अपने में मुख्य आधार बनती है। धर्म विधि सर्वप्रथम ईश्वर से मिलन स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां हम ईश्वर की पहल को पाते हैं, जो अपने पुत्र में मानवता के करीब आते हैं। शब्द ने शरीर धारण किया, जो पवित्र आत्मा से अभियंजित हुए, जिसके प्रत्युत्तर में हम कहते हैं ख्रीस्त के द्वारा, ख्रीस्त से और ख्रीस्त में, जो पवित्र आत्मा से संयुक्त हैं। कहने का अर्थ है, हम यीशु ख्रीस्त की प्रार्थना के लिए उनके प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जो अपने शरीर से अपने पिता को संबोधित करते हैं। यही कारण है संत पापा पॉल छाटवे ने धर्म विधि दैनिक प्रार्थनाओं की तीव्र चाह रखी, जो कलीसिया के लोगों के लिए दैनिक प्रार्थना है, जो यूखरिस्ट से अलग नहीं है। यह अत्यधिक गहरी, सजीव, सभी ख्रिस्तीय प्रार्थना को निर्देशित और उच्चरित करती तथा ईश प्रजा के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावकारी ढंग से पोषित करती है। संत पापा लियो ने कहा, इस चाह की प्रभावकारिता इस बात की मांग करती है कि धर्म विधि की प्रार्थनाओं को बपतिस्मा प्राप्त लोगों और समुदायों को पूर्ण रूपेण आलिंगन करते हुए जीने की आवश्यकता है। बहुत से लोग जो प्रार्थना करने हेतु सीखने की चाह रखते हैं, विशेषकर नव दीक्षार्थीगण, यह ख्रीस्तीय प्रार्थना उनके लिए मार्ग और पाठशाला हो सकता है।
2: Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo.
1: Har saptah aur har din Eucharist aur Kalisya ki dainik prarthana Kalisya ke jivan ki saansein banti hain, jise pavitra atma apne jivan ke dwara हमें प्रदान करते हैं। इस प्रार्थना में ख्रीस्त सारी मानव जाति के समुदाय को अपने संग संयुक्त करते हैं। वे उन्हें अपने दिव्य महिमा के भजन में सम्मिलित करते हैं। इस भांति दिन ब दिन हम उनके पास का रहस्य की एकता में संयुक्त होते जाते और उनके अनुरूप बनते हैं। संत अगुस्टिन हमारे लिए इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं कि जब हम करुणा की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, तो हम पुत्र को उनसे अलग नहीं करते हैं, और जब पुत्र प्रार्थना करते हैं तो वे अपने को शीर्ष से अलग नहीं करते हैं, और यह एक मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो ईश्वर के पुत्र हैं, दोनों हमारे लिए और हम में प्रार्थना करते हैं तथा जिनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। वे पुरोहित के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे शीर्ष के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर के रूप में हम उनसे प्रार्थना करते हैं। आइए तब हम उनमें अपने शब्दों को पहचाने और उनके शब्दों को अपने में। संत पापा लियो चौदवे ने कहा कि धर्म विधि की दैनिक प्रार्थना जो यूखरिस्त से संयुक्त उसकी ज्योति को दीर्घ बनाती है, हमारे दैनिक जीवन के समय को पवित्र करती है। सुबह में जब हम अपने दिन की शुरुआत विश्वास और कृतज्ञता में करते हैं, दोपहर में जब हम अपनी मेहनत में विश्वासी बने रहने की शक्ति की कामना करते हैं, संध्या के समय जब एक बार हमारे कार्य समाप्त हो जाते, संध्या वंदना सूर्यास्त के संग आगे बढ़ती है, रात में हम ईश्वर की शांति में अपने को सौंपते हुए विश्राम के लिए जाते हैं, हर घड़ी हमारे लिए आशा का एक कार्य है। पृथ्वी पर हमारी यात्रा के दौरान हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पूरी कलीसिया के संग ईश्वर की महिमा में आने की प्रतीक्षा करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो चौदवे ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने मोजाम्बिक के शाईशाई के प्रेरितिक प्रशासक मोनसिन्योर चिमोइयो को भेजे एक टेलीग्राम में 3 अगस्त को शाईशाई धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष सेवानिवृत्त कार्डिनल डोम जूलियो लांगा की 98 साल की उम्र में निधन हो जाने पर अपनी आध्यात्मिक सहानुभूति जताई, जिन्होंने सरलता, जोश और लगन के साथ मुश्किलों से निराश हुए बिना उन्हें सौंपी गई झुंड के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तार संदेश में संत पापा ने लिखा, मेरी आध्यात्मिक एकता और संवेदनाएं मोजाम्बिक के धर्माध्यक्ष इस प्यारे भाई के परिवार उस धर्म प्रांत के साथ हैं जहां उन्होंने पूरी लगन से सेवा की और पूरे देश के साथ है जो ऐसे शानदार पुरोहित के जाने का दुख मना रहा है। यीशु जो मालिक और प्रभु हैं के प्रति वफादार रहते हुए उन्होंने उनसे आत्माओं की देखभाल में करीबी की कला सीखी। खुद को सादगी, जोश और लगन के साथ उन्हें सौंपे गए झुंड के लिए समर्पित किया, मुश्किलों से निराश हुए बिना बल्कि उनसे ही उन जगहों को पहचाना जो खुशखबरी के लिए प्यासी थी। खासकर जब सभी मोजाम्बिक वासियों के बीच भाईचारे के भविष्य के लिए शांति और मेल मिलाप की खुशखबरी का प्रचार करना जरूरी हो गया। उधर वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की है कि संत पापा लियो 14वें 6 से 17 नवंबर तक उरुग्वाय, अर्जेंटीना और पेरू की प्रेरितिक यात्रा पर जाएंगे। संत पापा 6 से 8 नवंबर तक मोंटेवीडियो, पायसांदू और फ्लोरिडा, 8 से 11 नवंबर तक बोइनस आयरस, कोर्डोबा और लुजान, और 11 से 17 नवंबर तक लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकालपा जाएंगे। उरुग्वाय, जहां कैथोलिक आबादी सिर्फ 36% है, पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे कम कैथोलिक आबादी वाला देश है। वहीं अर्जेंटीना संत पापा फ्रांसिस का गृह देश था। हालांकि स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस, जो बोइनस आयरस से थे, अपने 12 साल के परमाध्यक्षीय काल के दौरान वहां नहीं जा पाए थे। अंत में पेरू एक ऐसा देश है जिसे संत पापा लियो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे पहली बार 1980 के दशक में एक मिशनरी के तौर पर वहां पहुंचे थे, बाद में वहां धर्माध्यक्ष के तौर पर सेवा की और नागरिकता हासिल की। लैटिन अमेरिका की यह यात्रा, जिसमें संत पापा 11 दिनों में 10 शहरों का दौरा करेंगे, उनकी 6ठी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा होगी। उधर संत पापा लियो 14वें ने कोलंबस के शूरवीरों को बढ़ावा दिया कि वे पुल बनाकर और बंटवारे वाली दुनिया में मेल मिलाप को बढ़ावा देकर सामंजस्य के पैगंबर बने। संत पापा ने यह अपील 4 अगस्त को कोलोराडो के डेनवर में हो रहे ऑर्डर के 144वें सम्मेलन के प्रतिभागियों को दिए एक वीडियो संदेश में की। सम्मेलन में उपस्थित और ऑनलाइन शामिल होने वालों का अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने सभा की थीम एक में हम एक हैं और एकता एवं दान के गुणों पर बात की, जो कोलंबस के शूरवीरों के 2 बुनियादी सिद्धांत हैं। अंतिम ब्यारी में यीशु की प्रार्थना को याद करते हुए कि उनके चेले सब एक हो जाएं, संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि एकता विश्वासियों की हर पीढ़ी को दिया गया एक तोहफा है। एकता बनाए रखना अक्सर आसान नहीं होता और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे ईमानदारी और विनम्र बातचीत के जरिए सक्रिय बनाना होगा। इसलिए संत पापा लियो ने शूरवीरों को प्रोत्साहित किया कि वे ख्रिस्त द्वारा चाही गई एकता की गवाही दें, जो उनके परिवारों और पल्लियों में शुरू होकर उन बड़े समुदायों तक फैले जहां वे रहते हैं और सेवा करते हैं। दान की बात करते हुए संत पापा ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए किए गए काम खुद एकता का रास्ता बन सकते हैं। जब हम जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अक्सर देने वालों और लेने वालों के बीच, साथ ही अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए मिलकर काम करने वालों के बीच एक खास मेलजोल बनता है। इस तरह दान न सिर्फ इंसानी दुख का जवाब बन जाता है
बल्कि भाईचारा बढ़ाने और क्रिश्चियन जीवन के दिल में मौजूद मेल जोल को मजबूत करने का एक ताकतवर जरिया भी बन जाता है। संत पापा ने कहा, अपनी तरफ से मैं कम किस्मत वाले लोगों के लिए आपके ऑर्डर की लगातार दरिया दिली के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे भरोसा है कि आपकी कोशिशें आने वाले कई सालों तक फल देती रहेंगी। उधर कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूस के रात भर के हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और 51 घायल हो गए हैं। स्थानीय समय अनुसार आधी रात के तुरंत बाद 7 अलग अलग इलाकों में लगभग 10 विस्फोट सुने गए, जिससे गोदामों, रसद बुनियादी ढांचों और आवासीय भवनों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। एक इमारत के मलबे से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया और कई इलाकों में बचाव अभियान अभी भी जारी है। ओडेसा में 3 जहाजों को क्षति हुई, जबकि रूस के तुला शहर में यूक्रेन के एक हमले में एक ऊंचे वाइल्डबेरी गोदाम को निशाना बनाया गया। कल रात मास्को ने जापोरेजिया क्षेत्र बाल अस्पताल पर हमला किया, जहां खुशकिस्मती से मरीज और स्टाफ पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भाग चुके थे और किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। उधर हाल के महीनों में लेबनान में बच्चे देश के जटिल संकटों का खमियाजा भुगत रहे हैं। सहायता एजेंसियों का कहना है कि लेबनान में बच्चे देश में एक साथ आने वाले संकटों का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं। उन्हें बढ़ती मौतों, बड़े पैमाने पर बेघर होने, खाने की गंभीर कमी और गहरे मानसिक सदमे का सामना करना पड़ रहा है। 7,70,000 से ज्यादा बच्चे बार बार हिंसा, नुकसान और अस्थिरता के संपर्क में आने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं और कई बच्चे बिना फटे बम के खतरे के कारण घर नहीं लौट पा रहे हैं। लेबनान आधुनिक इतिहास की सबसे बुरी आर्थिक गिरावट से गुजर रहा है और उनके पास स्वास्थ्य देखभाल, बिजली और शिक्षा तक सीमित पहुँच है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की पुनः शुरुआत की। उन्होंने वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
1: Priye bhaiyo evam behno, suprabhat aur suswagatam. इस धर्म शिक्षा माला में हम साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर अपना चिंतन जारी रखेंगे। आज हम धर्म विधि दैनिक प्रार्थना के कलिसियाई आयाम पर विचार करेंगे। संत पापा लियो ने कहा, जैसे कि प्रेरित संत पौलुस हमें सलाह देते हैं, यह पवित्र आत्मा है जो हमें प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं। पेंतेकोस्त के दिन से पवित्र आत्मा कलिसिया में निवास करते हैं, हर किसी को उसके कार्य के लिए प्रेरित करते हैं और विशेषकर प्रार्थना करने के लिए। यीशु के पुनरुत्थान उपरांत यरूशलेम में जन्मे प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय में हम पवित्र आत्मा में जीवन को पाते हैं जो पुनर्जीवित यीशु द्वारा प्राप्त होता है। तब से लेकर कलिसिया पास का रहस्य की यादगारी मनाने हेतु एक साथ आने में कभी नहीं चूकी है, जहां हम उन बातों को पढ़ते हैं जो पूरे धर्म ग्रंथ में उनके संबंध में लिखे गए थे। हम यूखरिस्त की धर्म विधि में उनके पुनरुत्थान और मृत्यु के उपरांत विजय की यादगारी मनाते हैं और इसके साथ ही हम ईश्वर को उनके अकथनीय उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु ख्रिस्त में उनकी महिमा के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम। संत पापा ने कहा, हमारे समय में जहां हम कुशलता के प्रभाव और भौतिकता की मानसिकता को पाते हैं, प्रार्थना हमारे लिए निरर्थक और तुच्छ जान पड़ती है। एक दुनिया में जहां विज्ञान और तकनीकी सारी चीजों का उत्तर देती है, प्रार्थना हमारे लिए एक तरह से पलायनवाद का स्वरूप लगता है। उससे भी बढ़कर बहुत से ख्रिस्तीय परिवारों में परंपरा से चली आ रही प्रार्थना को हम अब नहीं पाते हैं, जबकि बहुत से लोग इसे एक तकनीकी के रूप में देखने के भ्रम में पड़ जाते हैं, जो अपने में एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति जान पड़ती है और जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत रूप में कुशल मंगल रहने तक सीमित हो। प्रार्थना यद्यपि मानवता के एक मूलभूत आयाम स्वरूप हमसे इस बात की मांग करती है कि हम इसकी सच्ची प्रभावकारिता की पुनः खोज करें। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम ने इसकी आवश्यकता को गंभीरता से लिया है। यह संत पापा पॉल छठवें के लिए एक बृहद खुशी का कारण था, जो इस प्रथम दस्तावेज जिसे वैटिकन द्वितीय महासभा ने स्वीकृति दी घोषणा करते हुए कहते हैं,
2: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione.
1: ईश्वर सर्वप्रथम आते हैं, प्रार्थना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। धर्म विधि हमारे लिए दिव्य जीवन का मुख्य स्रोत है जो हमें दिया गया है। वह हमारी आध्यात्मिकता की प्रथम पाठशाला है। वास्तव में धर्म सिद्धांत में शब्दावली प्रार्थना हमारे लिए एक पूरी धर्म विधि की ओर इंगित कराती है। यह दृष्टिकोण हमारे लिए निर्णायक है, क्योंकि यह धर्म विधि में परिवर्तन को दिशा निर्देशित करती है, जिसके फलस्वरूप विश्वासियों की सक्रिय सहभागिता अपने में मुख्य आद

0: पापा पॉल छठवें ने धर्म विधि दैनिक प्रार्थनाओं की तीव्र चाह रखी, जो कलीसिया के लोगों के लिए दैनिक प्रार्थना है, जो यूखारिस्ट से अलग नहीं है। यह अत्यधिक गहरी, सजीव, सभी ख्रिस्तीय प्रार्थना को निर्देशित और उच्चरित करती तथा ईश प्रजा के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावकारी ढंग से पोषित करती है। संत पापा लियो ने कहा, इस चाह की प्रभावकारिता इस बात की मांग करती है कि धर्म विधि की प्रार्थनाओं को बपतिस्मा प्राप्त लोगों और समुदायों को पूर्ण रूपेण आलिंगन करते हुए जीने की आवश्यकता है। बहुत से लोग जो प्रार्थना करने हेतु सीखने की चाह रखते हैं, विशेषकर नव दीक्षार्थीगण, यह ख्रिस्तीय प्रार्थना उनके लिए मार्ग और पाठशाला हो सकता है।
1: Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo.
0: Har saptah aur har din Eucharist aur Kalisya ki dainik prarthana Kalisya ke jeevan ki saansein banti hain, jise pavitra aatma apne jeevan ke dwara हमें प्रदान करते हैं। इस प्रार्थना में ख्रिस्त सारी मानव जाति के समुदाय को अपने संग संयुक्त करते हैं। वे उन्हें अपने दिव्य महिमा के भजन में सम्मिलित करते हैं। इस भांति दिन ब दिन हम उनके पास का रहस्य की एकता में संयुक्त होते जाते और उनके अनुरूप बनते हैं। संत अगुस्टिन हमारे लिए इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं कि जब हम करुणा की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं तो हम पुत्र को उनसे अलग नहीं करते हैं, और जब पुत्र प्रार्थना करते हैं तो वे अपने को शीर्ष से अलग नहीं करते हैं। और यह एक मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो ईश्वर के पुत्र हैं, दोनों हमारे लिए और हम में प्रार्थना करते हैं तथा जिनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। वे पुरोहित के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे शीर्ष के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर के रूप में हम उनसे प्रार्थना करते हैं। आइए तब हम उनमें अपने शब्दों को पहचानें और उनके शब्दों को अपने में। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि धर्म विधि की दैनिक प्रार्थना जो यूखारिस्त से संयुक्त उसकी ज्योति को दीर्घ बनाती है, हमारे दैनिक जीवन के समय को पवित्र करती है। सुबह में जब हम अपने दिन की शुरुआत विश्वास और कृतज्ञता में करते हैं, दोपहर में जब हम अपनी मेहनत में विश्वासी बने रहने की शक्ति की कामना करते हैं, संध्या के समय जब एक बार हमारे कार्य समाप्त हो जाते, संध्या वंदना सूर्यास्त के संग आगे बढ़ती है, रात में हम ईश्वर की शांति में अपने को सौंपते हुए विश्राम के लिए जाते हैं, हर घड़ी हमारे लिए आशा का एक कार्य है। पृथ्वी पर हमारी यात्रा के दौरान हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पूरी कलीसिया के संग ईश्वर की महिमा में आने की प्रतीक्षा करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो चौदहवें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने मोजाम्बिक के शाईशाई के प्रेरितिक प्रशासक मोनसिन्योर चिमोइयो को भेजे एक टेलीग्राम में 3 अगस्त को शाईशाई धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष सेवानिवृत्त कार्डिनल डोम जूलियो लांगा की 98 साल की उम्र में निधन हो जाने पर अपनी आध्यात्मिक सहानुभूति जताई, जिन्होंने सरलता, जोश और लगन के साथ मुश्किलों से निराश हुए बिना उन्हें सौंपी गई झुंड के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तार संदेश में संत पापा ने लिखा, मेरी आध्यात्मिक एकता और संवेदनाएं मोजाम्बिक के धर्माध्यक्ष इस प्यारे भाई के परिवार उस धर्म प्रांत के साथ हैं जहां उन्होंने पूरी लगन से सेवा की और पूरे देश के साथ है जो ऐसे शानदार पुरोहित के जाने का दुख मना रहा है। यीशु जो मालिक और प्रभु हैं के प्रति वफादार रहते हुए उन्होंने उनसे आत्माओं की देखभाल में करीबी की कला सीखी। खुद को सादगी, जोश और लगन के साथ उन्हें सौंपे गए झुंड के लिए समर्पित किया, मुश्किलों से निराश हुए बिना बल्कि उनसे ही उन जगहों को पहचाना जो खुशखबरी के लिए प्यासी थी। खासकर जब सभी मोजाम्बिक वासियों के बीच भाईचारे के भविष्य के लिए शांति और मेल मिलाप की खुशखबरी का प्रचार करना जरूरी हो गया। उधर वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की है कि संत पापा लियो 14वें 6 से 17 नवंबर तक उरुग्वाय, अर्जेंटीना और पेरू की प्रेरितिक यात्रा पर जाएंगे। संत पापा 6 से 8 नवंबर तक मोंटेवीडियो, पायसांदु और फ्लोरिडा, 8 से 11 नवंबर तक बोइनस आयरस, कोर्डोबा और लुजान, और 11 से 17 नवंबर तक लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकालपा जाएंगे। उरुग्वाय, जहां कैथोलिक आबादी सिर्फ 36% है, पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे कम कैथोलिक आबादी वाला देश है। वहीं अर्जेंटीना संत पापा फ्रांसिस का गृह देश था। हालांकि स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस, जो बोइनस आयरस से थे, अपने 12 साल के परमाध्यक्षीय काल के दौरान वहां नहीं जा पाए थे। अंत में पेरू एक ऐसा देश है जिसे संत पापा लियो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे पहली बार 1980 के दशक में एक मिशनरी के तौर पर वहां पहुंचे थे, बाद में वहां धर्माध्यक्ष के तौर पर सेवा की और नागरिकता हासिल की। लैटिन अमेरिका की यह यात्रा, जिसमें संत पापा 11 दिनों में 10 शहरों का दौरा करेंगे, उनकी 6ठी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा होगी। उधर संत पापा लियो 14वें ने कोलंबस के शूर वीरों को बढ़ावा दिया कि वे पुल बनाकर और बंटवारे वाली दुनिया में मेल मिलाप को बढ़ावा देकर सामंजस्य के पैगंबर बने। संत पापा ने यह अपील 4 अगस्त को कोलोराडो के डेनवर में हो रहे ऑर्डर के 144वें सम्मेलन के प्रतिभागियों को दिए एक वीडियो संदेश में की। सम्मेलन में उपस्थित और ऑनलाइन शामिल होने वालों का अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने सभा की थीम एक में हम एक हैं और एकता एवं दान के गुणों पर बात की, जो कोलंबस के शूरवीरों के 2 बुनियादी सिद्धांत हैं। अंतिम ब्यारी में यीशु की प्रार्थना को याद करते हुए कि उनके चेले सब एक हो जाएं, संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि एकता विश्वासियों की हर पीढ़ी को दिया गया एक तोहफा है। एकता बनाए रखना अक्सर आसान नहीं होता और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे ईमानदारी और विनम्र बातचीत के जरिए सक्रिय बनाना होगा। इसलिए संत पापा लियो ने शूरवीरों को प्रोत्साहित किया कि वे ख्रिस्त द्वारा चाही गई एकता की गवाही दें, जो उनके परिवारों और पल्लियों में शुरू होकर उन बड़े समुदायों तक फैले जहां वे रहते हैं और सेवा करते हैं। दान की बात करते हुए संत पापा ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए किए गए काम खुद एकता का रास्ता बन सकते हैं। जब हम जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अक्सर देने वालों और लेने वालों के बीच, साथ ही अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए मिलकर काम करने वालों के बीच एक खास मेलजोल बनता है। इस तरह दान न सिर्फ इंसानी दुख का जवाब बन जाता है
बल्कि भाईचारा बढ़ाने और क्रिश्चिय जीवन के दिल में मौजूद मेल जोल को मजबूत करने का एक ताकतवर जरिया भी बन जाता है। संत पापा ने कहा, अपनी तरफ से मैं कम किस्मत वाले लोगों के लिए आपके ऑर्डर की लगातार दरिया दिली के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे भरोसा है कि आपकी कोशिशें आने वाले कई सालों तक फल देती रहेंगी। उधर कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूस के रात भर के हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और 51 घायल हो गए हैं। स्थानीय समय अनुसार आधी रात के तुरंत बाद 7 अलग अलग इलाकों में लगभग 10 विस्फोट सुने गए, जिससे गोदामों, रसद बुनियादी ढांचों और आवासीय भवनों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। एक इमारत के मलबे से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया और कई इलाकों में बचाव अभियान अभी भी जारी है। ओडेसा में 3 जहाजों को क्षति हुई, जबकि रूस के तुला शहर में यूक्रेन के एक हमले में एक ऊंचे वाइल्डबेरी गोदाम को निशाना बनाया गया। कल रात मास्को ने जापोरेजिया क्षेत्र बाल अस्पताल पर हमला किया, जहां खुशकिस्मती से मरीज और स्टाफ पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भाग चुके थे और किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। उधर हाल के महीनों में लेबनान में बच्चे देश के जटिल संकटों का खमियाजा भुगत रहे हैं। सहायता एजेंसियों का कहना है कि लेबनान में बच्चे देश में एक साथ आने वाले संकटों का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं। उन्हें बढ़ती मौतों, बड़े पैमाने पर बेघर होने, खाने की गंभीर कमी और गहरे मानसिक सदमे का सामना करना पड़ रहा है। 7,70,000 से ज्यादा बच्चे बार बार हिंसा, नुकसान और अस्थिरता के संपर्क में आने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं और कई बच्चे बिना फटे बम के खतरे के कारण घर नहीं लौट पा रहे हैं। लेबनान आधुनिक इतिहास की सबसे बुरी आर्थिक गिरावट से गुजर रहा है और उनके पास स्वास्थ्य देखभाल, बिजली और शिक्षा तक सीमित पहुँच है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्हैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

मैंने पृथ्वी पर एक और बात देखी है, न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, न सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पक्षी फंदे में फंसते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के नवे अध्याय के 11वें और 12वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। जीवन का अर्थ है क्या, इसी पर चिंतन का उपदेशक ग्रंथ का नवा अध्याय आग्रह करता है। उक्त पदों में उपदेशक मनुष्य पर आने वाली अप्रत्याशित विपत्तियों के बारे में चेतावनी देता है। वह कहता है कि मनुष्य समय और संयोग के अधीन है, इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि दौड़ केवल तेज दौड़ने वालों के लिए नहीं होती और न ही लड़ाई केवल ताकतवर लोगों के लिए। जीवन का वास्तविक अर्थ है क्या, इसी प्रश्न के साथ उपदेशक उलझा रहता है और तर्क वितर्क कर हम सबको सावधान करता है। कहता है कि न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता और न सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि, क्योंकि हम सब संयोग और समय के अधीन हैं। वह स्मरण दिलाता है कि जिस तरह मछलियां जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य विपत्ति के शिकार बन जाते हैं। अस्तु, मनुष्य हर समय और हर क्षण तैयार रहे, ईश नियमों का पालन करे, अपने दायित्वों का निर्वाह करे और सच्चाई से अपना जीवन यापन करे। आगे नवे अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक प्रज्ञा की उपेक्षा न करने का आग्रह कर कहता है, मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिसने मुझे प्रभावित किया। एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके चारों ओर मोर्चा बंदी कर दी। वहां के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। युद्ध यंत्रों की अपेक्षा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, किंतु एक ही गलती बहुत अच्छा काम बिगाड़ सकती है। यहाँ उपदेशक सुलेमान एक दरिद्र किंतु समझदार व्यक्ति की कहानी सुनाता है, जिसकी समझदारी ने एक शहर को एक बड़े राजा की घेराबंदी से बचाया। इसके बावजूद उस बेचारे को मरणोपरांत किसी ने भी याद नहीं किया। श्रोताओ, मनुष्य जल्दी ही भूल जाते हैं, किंतु ईश्वर भले कर्मों को कभी नहीं भूलते। वे मनुष्य को उसका पुरस्कार अवश्य देते हैं। तिमोथी को प्रेषित दूसरे पत्र के दूसरे अध्याय के 19वें पद में संत पॉल लिखते हैं, ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें ये शब्द अंकित हैं, प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं। अस्तु, जो प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से दूर रहे।

श्रोताओ, शक्ति से बेहतर है प्रज्ञा, विवेक और समझदारी। उपदेशक जानता था कि भले ही बुद्धि की कद्र नहीं की जाती और यह अंततः बेकार हो जाती है, फिर भी बुद्धि, प्रज्ञा और विवेक शक्ति अथवा बल से बेहतर है। इसीलिए बुद्धिमान की धीरे से कही बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मूर्खों की चिल्लाहट से कानों को बंद कर लेना चाहिए। हालांकि प्रज्ञावान बातें हमेशा सुनी नहीं जाती। श्रोताओ, वर्तमान विश्व पटल पर यदि दृष्टिपात करें तो उपदेशक के उक्त शब्द बिल्कुल सटीक और सही प्रतीत होते हैं। आज भी यही हो रहा है। युद्ध में ताकतवर सब पर हावी हो रहा है। वह प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक द्वारा होने वाली बातचीत और समझौतों पर नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के बल पर सब कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहा है तथा विश्व व्यवस्था में हाहाकार मचा रहा है। इन्हीं बातों के प्रति सचेत रहने का हमसे उपदेशक आग्रह करता है। श्रोताओ, उपदेशक सुलेमान इस बात को समझ गया था कि किसी भी चीज को नष्ट करना अथवा ध्वस्त करना आसान है, किंतु उसका निर्माण करना या पुनर्निर्माण करना अति कठिन है। समझदारी से चीजों का निर्माण करना एक पापी के काम से उसे खत्म करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बाइबल धर्म ग्रंथ की पुस्तकों में इसका उदाहरण हमें मिलता है। आदम के पाप ने संपूर्ण मानव जाति को पाप से संक्रमित कर दिया। आकान के गुनाह की वजह से इज़राइल की हार हुई और राजाओं के पहले ग्रंथ के अनुसार रहुबियाम की मूर्खता के कारण बड़ा झगड़ा हुआ था।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय की ओर दृष्टिपात करें। 10वें अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर है, जो दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी मूर्खता जिंदगी भर की समझदारी को बर्बाद कर सकती है। उपदेशक छोटी सूक्तियों का इस्तेमाल कर समझाता है कि समझदारी से पूर्ण चुनाव, सोच समझकर कही गई बातें और सही तैयारी से जिंदगी आसानी से चलती है, जबकि मूर्ख लोग आलस और लापरवाही भरी बातों से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। वस्तुतः 10वें अध्याय में थोड़ी सी मूर्खता के नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर काबू रखने की जरूरत पर बल दिया जाता है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत और प्रायः नजरअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। 10वें अध्याय के प्रथम पद में ही उपदेशक स्मरण दिलाता है कि जिस प्रकार मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य को बिगाड़ देती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है। इस पद में सुलेमान ने कहावतों का एक जाना पहचाना तरीका अपनाया है। एक स्पष्ट और जानी पहचानी बात कही गई है कि मरी हुई मक्खियां एक अच्छे मरहम को या द्रव्य को खराब कर देती हैं और उसमें बदबू पैदा कर देती हैं। यह पिछले अध्याय के अंत में बताए गए सत्य की प्रतीकात्मक पुष्टि है कि पापी बहुत सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देते।

आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें बृहस्पतिवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर असीसी पहुंचे। वे वैटिकन से सुबह 8 बजे निकले और हेलीकॉप्टर द्वारा 8:30 बजे असीसी पहुंचे। संत मरिया देली आंजेली महागिरजा घर, जहां संत फ्रांसिस असीसी का प्रार्थनालय पोचुंगुला है, उसके प्रांगण में पोप का स्वागत फ्रांसिस्कन ऑर्डर के सुपीरियर्स ने किया। उम्ब्रिया और सर्देनिया के फ्रायर माइनर के प्रोविंशियल सुपीरियर फादर मार्को वियानेल्ली ने अपने स्वागत भाषण में कहा, अत्यंत खुशी एवं सच्चे आभार के साथ हम पोचुंगुला में आपका दिल से स्वागत करते हैं। यह एक छोटी एवं पौत्र जगह है जिसे सेंट फ्रांसिस किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा पसंद करते थे और इसे फ्रांसिस्कन कारिज्म की शुरुआत की एक जीती जागती स्मृति के रूप में अपने भाइयों के लिए छोड़ना चाहते थे और जो एक धन्य भूमि का केंद्र है जहाँ सुसमाचार सादगी भाईचारा एवं शांति में गूंजता रहता है। उम्ब्रियन शहर असीसी में संत पापा लियो 14वें की प्रेरितिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य था उन युवाओं से मुलाकात करना जो 4 दिनों से गो फ्रांसिस्कन यूथ मीटिंग 2026 में भाग ले रहे हैं। संत फ्रांसिस के निधन की 8वीं वर्षगांठ को याद करते हुए जिन्होंने इसी जगह पर 3 अक्टूबर 1226 को बहन मृत्यु का स्वागत किया था, फादर वियानेल्ली ने खास तौर पर गो फ्रांसिस्कन यूथ मीटिंग 2026 का जिक्र किया, जिसमें पूरे यूरोप से हजारों युवा विश्वास आशा एवं भाईचारे की यात्रा साझा करने के लिए पोचुंगुला के पास एकत्रित हुए हैं। प्रोविंशियल सुपीरियर ने रोम के धर्मदक्ष को उनकी उपस्थिति के लिए पुनः धन्यवाद दिया और इसे सुसमाचार के भरोसेमंद गवाह बनने में हमारी मदद के लिए हौसला एवं समर्थन का संकेत बताया। पोप लियो 14वें ने अपने प्रेरितिक यात्रा के पहले पड़ाव संत मरिया देली आंजेली दूतों की संत मरिया में युवाओं के सवालों के जवाब दिए और उन्हें समझाया कि सुसमाचारी मूल सिद्धांत कट्टरवाद के बिल्कुल विपरीत है। यह हमें अंधा और हिंसक नहीं बनाता बल्कि संवेदनशील एवं विनीत और सभी का स्वागत करने वाला बनाता है। आज संत फ्रांसिस असीसी की आध्यात्मिक विरासत को कैसे जिया जा सकता है, हम एक ऐसी दुनिया में सेवा और स्वागत की भावना को कैसे अपना सकते हैं जो लगातार जुल्म और उपभोक्तावाद से प्रभावित हो रही है, और हम एक ऐसी कलीसिया पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो खुद संकटों और उलझनों से घिरी हुई है। ये ही कुछ सवाल थे जिनको 3 युवाओं ने पोप से पूछा, जिन्होंने न केवल अपनी पीढ़ी की बल्कि कई अन्य लोगों की चिंताओं को आवाज दी। पोप लियो ने असीसी के उम्ब्रियन शहर में अपने प्रेरितिक दौरे की शुरुआत संत मरिया देली आंजेली में युवाओं से मिलकर की। उनके हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कई खास सिद्धांतों को दोहराया। धर्म का कभी भी राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि नेतृत्व आज़ादी देने वाला, जिम्मेदार और सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। जागरेब की करोलिना ने पूछा कि लोग मसीह के असली शिष्य कैसे बने रह सकते हैं और एक जीवंत विश्वास कैसे साझा कर सकते हैं जो कलीसिया की दीवारों तक ही सीमित ना रहे। जवाब में पोप युद्ध के विषय पर वापस आए, यह याद करते हुए कि करोलिना यूरोप के एक ऐसे इलाके से आती है जिसने 30 साल पहले युद्ध देखा था, साथ ही धार्मिक संबंधता और राष्ट्रवाद के खतरनाक ताने बाने को भी देखा था। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बातचीत के लिए फ्रांसिस्कन धर्म संघों की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता ने कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनों और मुसलमानों को शांति से एक साथ रहने में मदद की। पोप लियो ने कहा कि यही वह रास्ता है जिस पर चलते रहना चाहिए। आज इस सामीप्य की परंपरा के प्रति वफादार रहने का मतलब है धारा के विपरीत चलना, यादों को चंगा करने के लिए काम करना और मेल मिलाप को बढ़ावा देना, ख्रिस्तियों को अलग अलग पहचानों के बीच झगड़ों में धर्म का फायदा उठाने के लिए लुभाए जाने वाले समाज में शांति निर्माता बनने के लिए बुलाया जाता है। पोप ने जोर देकर कहा

कि संत फ्रांसिस असीसी के आध्यात्मिक बेटे और बेटियों के रूप में जीने का मतलब है सुसमाचारी मूल सिद्धांत का सही अर्थ समझना। यह चरमपंथ से बिल्कुल उल्टा है। यह हमें अंधा और हिंसक नहीं बनाता, बल्कि संवेदनशील और चौकस बनाता है, हमेशा यीशु का अनुसरण करता और इसलिए सबके प्रति विनम्र एवं स्वागत करने वाला बनाता है। यह आसान नहीं है, लेकिन इससे बहुत खुशी मिलती है। पोप ने सुझाव दिया कि इस रास्ते पर चलने का मतलब कभी कभी असुविधा या पुरानी बातों का चुनाव करना, जबकि हर तरह की हेरा फेरी का विरोध करना होता है। इसलिए ख्रिस्त का साक्ष्य देना दिलचस्प एवं मुश्किल दोनों है, क्योंकि यह हमारे मन और दिल को बनावटी घेरे के बाहर खोलता है, यानी गलत जानकारी और भेदभाव की दीवारों से पैदा हुए डर से परे। उन्होंने याद दिलाया कि कलीसिया होने का मतलब है एक ऐसा घर होना जो सबके लिए खुला हो, एक ऐसा समुदाय जो सुनता हो और भाईचारे की खुशी महसूस करता हो, या एक ऐसी जगह भी है जहां लोग वर्चुअल दुनिया से परे एक साथ रहने की अहमियत को फिर से खोजते हैं, जो युद्ध के बिल्कुल विपरीत है। पोप ने कहा, प्यारे युवाओं, एक साथ रहना कितना सुंदर है, और ईश्वर के बारे में और उनकी रोशनी में जीवन के बारे में बात करना उनकी सारी सुंदरता, रहस्य और गंभीरता के साथ। आप जहां भी जाएं, जीने के इस तरीके के गवाह बने, खासकर ऐसे समय में जब तकनीकी हमें यह भुलवा रही है कि हार्ड मास के लोगों के रूप में एक साथ कैसे रहना है। पोप ने कहा कि कलीसिया के लिए यीशु की इच्छा स्पष्ट है, उससे उनका शरीर बनना चाहिए और उनके जीवन को दिखाना चाहिए। इसका मतलब है उनके उदाहरणों पर चलना और एक अलग तरह की शक्ति का इस्तेमाल करना जो दूसरों को अपमानित नहीं करती बल्कि उन्हें ऊपर उठाती है। असीसी की अपनी एक दिवसीय प्रेरित यात्रा के दौरान संत पापा लियो चौदहवें ने फ्रांसिस्कन युवाओं के सम्मेलन में मिस्सा बलिदान अर्पित किया। संत पापा लियो ने मिस्सा बलिदान के दौरान प्रवचन के आधार पर युवाओं को दिए गए अपने संदेश में कहा कि प्रभु के रूपांतरण का पर्व जिसे हम आज मनाते हैं ज्योति का एक रहस्य है जो हमारे मिलन को समृद्ध बनाता है, वह जो अपने में आनंदमय है, यद्यपि यह वर्तमान और भविष्य से संबंधित बहुत सारे सवालों को उत्पन्न करता है। सुसमाचार में ज्योति और छाया, शांति और शब्दों, आश्चर्य और समझ के बीच एक विरोधाभास को पाते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

मैंने पृथ्वी पर एक और बात देखी है। न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, न सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पक्षी फंदे में फंसते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के नवे अध्याय के 11वें और 12वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। जीवन का अर्थ है क्या, इसी पर चिंतन का उपदेशक ग्रंथ का नवा अध्याय आग्रह करता है। उक्त पदों में उपदेशक मनुष्य पर आने वाली अप्रत्याशित विपत्तियों के बारे में चेतावनी देता है। वह कहता है कि मनुष्य समय और संयोग के अधीन है, इसलिए यह याद रखना आवश्यक है कि दौड़ केवल तेज दौड़ने वालों के लिए नहीं होती और न ही लड़ाई केवल ताकतवर लोगों के लिए। जीवन का वास्तविक अर्थ है क्या, इसी प्रश्न के साथ उपदेशक उलझा रहता है और तर्क वितर्क कर हम सबको सावधान करता है। कहता है कि न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता और न सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि, क्योंकि हम सब संयोग और समय के अधीन हैं। वह स्मरण दिलाता है कि जिस तरह मछलियां जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य विपत्ति के शिकार बन जाते हैं। अस्तु, मनुष्य हर समय और हर क्षण तैयार रहे, ईश नियमों का पालन करे, अपने दायित्वों का निर्वाह करे और सच्चाई से अपना जीवन यापन करे। आगे नवे अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक प्रज्ञा की उपेक्षा न करने का आग्रह कर कहता है, मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिसने मुझे प्रभावित किया। एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके चारों ओर मोर्चा बंदी कर दी। वहां के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। युद्ध यंत्रों की अपेक्षा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, किंतु एक ही गलती बहुत अच्छा काम बिगाड़ सकती है। यहाँ उपदेशक सुलेमान एक दरिद्र किंतु समझदार व्यक्ति की कहानी सुनाता है, जिसकी समझदारी ने एक शहर को एक बड़े राजा की घेराबंदी से बचाया। इसके बावजूद उस बेचारे को मरणोपरांत किसी ने भी याद नहीं किया। श्रोताओ, मनुष्य जल्दी ही भूल जाते हैं, किंतु ईश्वर भले कर्मों को कभी नहीं भूलते। वे मनुष्य को उसका पुरस्कार अवश्य देते हैं। तिमोथी को प्रेषित दूसरे पत्र के दूसरे अध्याय के 19वें पद में संत पॉल लिखते हैं, ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें ये शब्द अंकित हैं, प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं। अस्तु, जो प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से दूर रहे।

श्रोताओं, शक्ति से बेहतर है प्रज्ञा, विवेक और समझदारी। उद्देशक जानता था कि भले ही बुद्धि की कद्र नहीं की जाती और यह अंततः बेकार हो जाती है, फिर भी बुद्धि, प्रज्ञा और विवेक शक्ति अथवा बल से बेहतर है। इसीलिए बुद्धिमान की धीरे से कही बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मूर्खों की चिल्लाहट से कानों को बंद कर लेना चाहिए। हालांकि प्रज्ञावान बातें हमेशा सुनी नहीं जाती। श्रोताओं, वर्तमान विश्व पटल पर यदि दृष्टिपात करें तो उपदेशक के उक्त शब्द बिल्कुल सटीक और सही प्रतीत होते हैं। आज भी यही हो रहा है। युद्ध में ताकतवर सब पर हावी हो रहा है। वह प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक द्वारा होने वाली बातचीत और समझौतों पर नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के बल पर सब कुछ हासिल करने का प्रयास कर रहा है तथा विश्व व्यवस्था में हाहाकार मचा रहा है। इन्हीं बातों के प्रति सचेत रहने का हमसे उपदेशक आग्रह करता है। श्रोताओं, उपदेशक सुलेमान इस बात को समझ गया था कि किसी भी चीज को नष्ट करना अथवा ध्वस्त करना आसान है, किंतु उसका निर्माण करना या पुनर्निर्माण करना अति कठिन है। समझदारी से चीजों का निर्माण करना एक पापी के काम से उसे खत्म करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बाइबल धर्म ग्रंथ की पुस्तकों में इसका उदाहरण हमें मिलता है। आदम के पाप ने संपूर्ण मानव जाति को पाप से संक्रमित कर दिया। आकान के गुनाह की वजह से इज़राइल की हार हुई और राजाओं के पहले ग्रंथ के अनुसार रहुबियाम की मूर्खता के कारण बड़ा झगड़ा हुआ था।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय की ओर दृष्टिपात करें। 10वें अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर है, जो दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी मूर्खता जिंदगी भर की समझदारी को बर्बाद कर सकती है। उपदेशक छोटी सूक्तियों का इस्तेमाल कर समझाता है कि समझदारी से पूर्ण चुनाव, सोच समझकर कही गई बातें और सही तैयारी से जिंदगी आसानी से चलती है, जबकि मूर्ख लोग आलस और लापरवाही भरी बातों से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। वस्तुतः 10वें अध्याय में थोड़ी सी मूर्खता के नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर काबू रखने की जरूरत पर बल दिया जाता है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत और प्रायः नजरअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। 10वें अध्याय के प्रथम पद में ही उपदेशक स्मरण दिलाता है कि जिस प्रकार मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य को बिगाड़ देती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है। इस पद में सुलेमान ने कहावतों का एक जाना पहचाना तरीका अपनाया है। एक स्पष्ट और जानी पहचानी बात कही गई है कि मरी हुई मक्खियां एक अच्छे मरहम को या द्रव्य को खराब कर देती हैं और उसमें बदबू पैदा कर देती हैं। यह पिछले अध्याय के अंत में बताए गए सत्य की प्रतीकात्मक पुष्टि है कि पापी बहुत सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। जैसे छोटी छोटी मरी हुई मक्खियां एक बढ़िया मरहम को खराब कर देती हैं, वैसे ही थोड़ी सी मूर्खता किसी समझदार और इज्जतदार इंसान की इज्जत को, उसके सम्मान को मिट्टी में मिला देती है। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि छोटी से छोटी बातों के भी नतीजे होते हैं, इसलिए व्यक्ति ध्यानपूर्वक अपने दायित्वों का पालन करते हुए जीवन यापन करे।

आप वाटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें बृहस्पतिवार को अपनी एक दिवसीय दौरे पर असीसी पहुंचे। वे वैटिकन से सुबह 8 बजे निकले और हेलीकॉप्टर द्वारा 8:30 बजे असीसी पहुंचे। संत मरिया देली आंजेली महागिरजा घर, जहां संत फ्रांसिस असीसी का प्रार्थनालय पोचुंगुला है, उसके प्रांगण में पोप का स्वागत फ्रांसिस्कन ऑर्डर के सुपीरियर्स ने किया। उम्ब्रिया और सर्देनिया के फ्रायर माइनर के प्रोविंशियल सुपीरियर फादर मार्को वियानेल्ली ने अपने स्वागत भाषण में कहा, अत्यंत खुशी एवं सच्चे आभार के साथ हम पोचुंगुला में आपका दिल से स्वागत करते हैं। यह एक छोटी एवं पौत्र जगह है जिसे संत फ्रांसिस किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा पसंद करते थे और इसे फ्रांसिस्कन कारिज्म की शुरुआत की एक जीती जागती स्मृति के रूप में अपने भाइयों के लिए छोड़ना चाहते थे और जो एक धन्य भूमि का केंद्र है जहाँ सुसमाचार सादगी भाईचारा एवं शांति में गूंजता रहता है। उम्ब्रियन शहर असीसी में संत पापा लियो 14वें की प्रेरितिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य था उन युवाओं से मुलाकात करना जो 4 दिनों से गो फ्रांसिस्कन यूथ मीटिंग 2026 में भाग ले रहे हैं। संत फ्रांसिस के निधन की 8वीं वर्षगांठ को याद करते हुए जिन्होंने इसी जगह पर 3 अक्टूबर 1226 को बहन मृत्यु का स्वागत किया था, फादर वियानेल्ली ने खास तौर पर गो फ्रांसिस्कन यूथ मीटिंग 2026 का जिक्र किया जिसमें पूरे यूरोप से हजारों युवा विश्वास आशा एवं भाईचारे की यात्रा साझा करने के लिए पोचुंगुला के पास एकत्रित हुए हैं। प्रोविंशियल सुपीरियर ने रोम के धर्मदक्ष को उनकी उपस्थिति के लिए पुनः धन्यवाद दिया और इसे सुसमाचार के भरोसेमंद गवाह बनने में हमारी मदद के लिए हौसला एवं समर्थन का संकेत बताया। पोप लियो 14वें ने अपने प्रेरितिक यात्रा के पहले पड़ाव संत मरिया देली आंजेली दूतों की संत मरिया में युवाओं के सवालों के जवाब दिए और उन्हें समझाया कि सुसमाचारी मूल सिद्धांत कट्टरवाद के बिल्कुल विपरीत है। यह हमें अंधा और हिंसक नहीं बनाता बल्कि संवेदनशील एवं विनीत और सभी का स्वागत करने वाला बनाता है। आज संत फ्रांसिस असीसी की आध्यात्मिक विरासत को कैसे जिया जा सकता है, हम एक ऐसी दुनिया में सेवा और स्वागत की भावना को कैसे अपना सकते हैं जो लगातार जुल्म और उपभोक्तावाद से प्रभावित हो रही है, और हम एक ऐसी कलीसिया पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो खुद संकटों और उलझनों से घिरी हुई है। ये ही कुछ सवाल थे जिनको 3 युवाओं ने पोप से पूछा जिन्होंने न केवल अपनी पीढ़ी की बल्कि कई अन्य लोगों की चिंताओं को आवाज दी। पोप लियो ने असीसी के उम्ब्रियन शहर में अपने प्रेरितिक दौरे की शुरुआत संत मरिया देली आंजेली में युवाओं से मिलकर की। उनके हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कई खास सिद्धांतों को दोहराया। धर्म का कभी भी राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि नेतृत्व आज़ादी देने वाला, जिम्मेदार और सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। जागरेब की करोलिना ने पूछा कि लोग मसीह के असली शिष्य कैसे बने रह सकते हैं और एक जीवंत विश्वास कैसे साझा कर सकते हैं जो कलीसिया की दीवारों तक ही सीमित ना रहे। जवाब में पोप युद्ध के विषय पर वापस आए, यह याद करते हुए कि करोलिना यूरोप के एक ऐसे इलाके से आती है जिसने 30 साल पहले युद्ध देखा था, साथ ही धार्मिक संबद्धता और राष्ट्रवाद के खतरनाक ताने बाने को भी देखा था। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बातचीत के लिए फ्रांसिस्कन धर्म संघों की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता ने कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनों और मुसलमानों को शांति से एक साथ रहने में मदद की। पोप लियो ने कहा कि यही वह रास्ता है जिस पर चलते रहना चाहिए। आज इस सामीप्य की परंपरा के प्रति वफादार रहने का मतलब है धारा के विपरीत चलना, यादों को चंगा करने के लिए काम करना और मेल मिलाप को बढ़ावा देना, ख्रिस्तियों को अलग अलग पहचानों के बीच झगड़ों में धर्म का फायदा उठाने के लिए लुभाए जाने वाले समाज में शांति निर्माता बनने के लिए बुलाया जाता है। पोप ने जोर देकर कहा कि संत फ्रांसिस असीसी के आध्यात्मिक बेटे और बेटियों के रूप में जीने का मतलब है सुसमाचारी मूल सिद्धांत का सही अर्थ समझना। यह चरमपंथ से बिल्कुल उल्टा है। यह हमें अंधा और हिंसक नहीं बनाता बल्कि संवेदनशील और चौकस बनाता है, हमेशा यीशु का अनुसरण करता और इसलिए सबके प्रति विनम्र एवं स्वागत करने वाला बनाता है। यह आसान नहीं है लेकिन इससे बहुत खुशी मिलती है।
पोप ने सुझाव दिया कि इस रास्ते पर चलने का मतलब कभी कभी असुविधा या पुरानी बातों का चुनाव करना, जबकि हर तरह की हेरा फेरी का विरोध करना होता है। इसलिए ख्रिस्त का साक्ष्य देना दिलचस्प एवं मुश्किल दोनों है, क्योंकि यह हमारे मन और दिल को बनावटी घेरे के बाहर खोलता है, यानी गलत जानकारी और भेदभाव की दीवारों से पैदा हुए डर से परे। उन्होंने याद दिलाया कि कलीसिया होने का मतलब है एक ऐसा घर होना जो सबके लिए खुला हो, एक ऐसा समुदाय जो सुनता हो और भाईचारे की खुशी महसूस करता हो, या एक ऐसी जगह भी है जहां लोग वर्चुअल दुनिया से परे एक साथ रहने की अहमियत को फिर से खोजते हैं, जो युद्ध के बिल्कुल विपरीत है। पोप ने कहा, प्यारे युवाओं, एक साथ रहना कितना सुंदर है, और ईश्वर के बारे में और उनकी रोशनी में जीवन के बारे में बात करना, उनकी सारी सुंदरता, रहस्य और गंभीरता के साथ। आप जहां भी जाएं, जीने के इस तरीके के गवाह बने, खासकर ऐसे समय में जब तकनीकी हमें यह भुलवा रही है कि हार्ड मास के लोगों के रूप में एक साथ कैसे रहना है। पोप ने कहा कि कलीसिया के लिए यीशु की इच्छा स्पष्ट है, उससे उनका शरीर बनना चाहिए और उनके जीवन को दिखाना चाहिए। इसका मतलब है उनके उदाहरणों पर चलना और एक अलग तरह की शक्ति का इस्तेमाल करना जो दूसरों को अपमानित नहीं करती बल्कि उन्हें ऊपर उठाती है। असीसी की अपनी एक दिवसीय प्रेरित यात्रा के दौरान संत पापा लियो 14वें ने फ्रांसिस्कन युवाओं के सम्मेलन में मिस्सा बलिदान अर्पित किया। संत पापा लियो ने मिस्सा बलिदान के दौरान प्रवचन के आधार पर युवाओं को दिए गए अपने संदेश में कहा कि प्रभु के रूपांतरण का पर्व जिसे हम आज मनाते हैं ज्योति का एक रहस्य है जो हमारे मिलन को समृद्ध बनाता है, वह जो अपने में आनंदमय है, यद्यपि यह वर्तमान और भविष्य से संबंधित बहुत सारे सवालों को उत्पन्न करता है। सुसमाचार में ज्योति और छाया, शांति और शब्दों, आश्चर्य और समझ के बीच एक विरोधाभास को पाते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।